0: सच कहे जो होंगे
1: चले ते पकती रोटी सच है
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है
1: खुरदी पानी सच है।

ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छू मंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो bramptoncashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे ले तो हाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ।

बैठ जरा मैं अख दी बारी भेड़ दियां, बैठ जरा मैं अख दी बारी भेड़ दियां, फिर होंठां तो राग पहाड़ी छेड़ दियां। बैठ जरा मैं अख दी बारी भेड़ दियां, फिर होंठां तो राग पहाड़ी छेड़ दियां। तेरे लई तां बुण बुण झल्लिया रखे सी, तेरे लई तां बुण बुण झल्लिया रखे सी, हुण कहना ऐ सारे ख्वाब उधेड़ दियां। मैं चाहुंदा हां हाले वक्त लंघा लईए, मैं चाहुंदा हां हाले वक्त लंघा लईए, तू चाहुंना ऐ सारी हुणे नबेड़ दियां, तू चाहुंना ऐ सारी हुणे नबेड़ दियां। बहुत बहुत प्यार सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा होस्ट तुहाडा दोस्त रेडियो प्रोग्राम सब रंग दा सूत्रधार डॉक्टर दर्शनदीप हाजर हां। सोमवार तो लैके शुक्रवार तक पेश हुंदे रेडियो प्रोग्राम सब रंग नूं लैके, जिस नूं तुसी सुनदे हो 10 बजे तो लैके 11 बजे तक। बहुत प्यार करदे हो, बहुत मान दिंदे हो, बहुत सत्कार करदे हो। रेडियो प्रोग्राम दे विच अपने अपने फोनां तों मेरे नाल फोन मिला के बहुत अच्छियां गल्लां बातां करदे हो, अपनियां अपनियां फरमाइशां भी पूरियां करवांदे हो। हुण तुसी जुड़ चुके हो साडे नाल 5:30 AM दी फ्रीक्वेंसी ते रेडियो प्रोग्राम सब रंग दे विच, जिसका फोन नंबर हर रोज दी तरह होई है 6473653553, 6473657 5353, 6473653553। वीकेंड मना के आ रहे हो परिवार दे नाल, बच्चियां दे नाल, दोस्तां दे नाल, किते ना किते जरूर इधर उधर गए होगे क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है। बच्चों दी भी छुट्टियां चल रही ने, 17 अगस्त अज हो गई है। इस वेले टेंपरेचर है 20 डिग्री और दिन वेले रहा 26 तक। सोमवार का दिन अज बीत गया, कल मंगलवार आ गया। बस हुण थोड़ी देर तो बाद 2 घंटिया बाद मंगलवार दे विच प्रवेश आपां कर जावांगे। 18 अगस्त हो जानी है। 27 डिग्री टेंपरेचर कल रहण की संभावना है। 6:26 ते सूरज देवता ने दर्शन देने ने, ते 8:17 ते उन्हें अपने घर वापस चले जाना। ते मौसम कल जिहड़ा देख लो, बस 27 डिग्री टैंपरेचर रहेगा।

0: मम्मी पापा दे वीजे लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
4: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: Horses, grasses, habits, not horsey beasts. बोले सोने हाल सस्याकाल।
1: मैं कह जी काफी टाइम तो आपा कार दी रेनोवेशन नहीं करवाई ताही ता कार वधिया प्राइस ते सेल नहीं हुंदा।
2: शम्मी पठल होरा नाल करो गल कार दी रेनोवेशन करा के लिस्ट कर देने वधिया रैकेट प्राइस ते सेल करवा के दंदे ने।
1: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम मल्टी अवार्ड विनर ब्रोकर शम्मी पठल।
2: वधिया रैकेट प्राइस ते कार सेल करवाउन ले कॉल करो 416-917-7763 यानी 416-917-7763।

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे सत्ते दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

0: Sagar Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons te baith jaiye.
0: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiya chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne full privacy mil di hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग होगी।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कोई कॉल करो 9054512600 9054512600

0: पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन।

खूबसूरत सुवेदा, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्क, सीएचएलओ डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी राइट, टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक जैसे सुन रहे हो अमेरिका दे विच, कैनेडा दे विच सानू सारनिया लैंडर किचन वॉटल कैम्ब्रिज दे नाल नाल वुडस्टॉक तो लैके ब्रेंटफोर्ड, ब्रेंटफोर्ड तो हैमिल्टन नेगर फॉल्स, और अगर फोरवन ते रहिए तो गोल्फ टू जी टी ए इंटायर ईस्ट के सानू तुसी सुनते हो जिथे मार्कम, स्कारब्रो, ओशवा, कर्टस, बाउनविल, हैम्पटन, एजैक्स, पिकरिंग, विटबी के नाल नाल बेलवेल तक और लिंडसी पीटरब्रो होंदे हुए सानू सुनते हो। इस समय नॉर्थ दे विच बैरी 400 सीरीज़ दे पर जो सानू तुसी ओरिलिया तक और 11 हाईवे देते सानू तुसी ओवन साउंड सॉरी माफ़ी चाहूँगा ग्रैवन हस तक सुनते हो, और नानल मेल्टोन आइलैंड तो लैके तुसी सानू टोबरमरी, टोबरमरी तो लैके विंगम तक तकरीबन 650 किलोमीटर का एरिया जिहड़ा हैगा कैनेडा का, और तकरीबन 400 किलोमीटर के एरिए अमेरिका दे विच सानू तुसी अपने रेडियोज़ दे उत्ते सुनते हो, और सब तो वध ते सब तो वड्डी फ्रीकुएंसी दे तौर दे उत्ते ते प्राइम टाइम दे विच रश आवर दे विच जदों तुसी घरां चों निकलदे हो अपने, ते तुसी मेरे नाल मुखातब हो। मैं हाँ अमदीप सिंह बैनीपाल, ब्रॉडकास्टिंग सैक्टर दे विच आकाशवाणी राही तुहाडे नाल जुड़िया हाँ तकरीबन पिछले 15 साल तो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं, उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरपाओ निरवैर, उम्मीद मुस्कुराहट चेहरे का पाठ रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे लोग मिलते रहेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस तुहाडे को छड़दे रहेंगे, कुछ टीचर बनेंगे ते कुछ मित्र प्यारे बनेंगे। टीचर्स वो ने जो थोनू अकल देंदे ने, ते मित्र प्यारे वो ने जो थोड़े लिए सब कुछ कुर्बान नू करनू तैयार हो जाते हैं। सो एक बार फिर तो इस सिलसिले में कि ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, तो तुसी साडे नाल 10 बजे तक साथ साथ चलोगे, 9-14 स्टूडियोज जिकड़ियां दे उत्ते जिथे 18 तरीक हो चुकी है अहम दिन कल दा, जिथे डोनल्ड ट्रंप दे नाल मार्क कारनी दा सब तो टफ पार्ट, यानी कि दिखाया गया मार्क कारनी वोकेशन ते गया, छोटी सोच दे लोग तुहानू व्याख्या कर कर सुना रहे सी कि एडे वड्डे टैरिफ ने, कारनी उत्थे बैठा, स्ट्रैटजी दा पार्ट सी कि ट्रंप अगर साडे नाल सैटल करेगा ऑन ग्रेटफुल लैवल वी आर रेडी टू डू, जे हुण अगे मंगो सानू लुटना असी तैयार नहीं हैगे लुटाउण नू, यानी कि थानू ये लगता है कि वो खनी कि चीज़ा मंग रहे ने जिन्हें कैनेडा मना कर रहा है। एग्जाम्पल थोड़ा मैं कल दिते सी कि 100 साल लई तुसी कसीनो नहीं बना सकते हैगे नैगरा फॉल्स, क्योंकि अमेरिका दी कंपनी ने एक्सक्लूसिविटी से साइन करा के ले हुए ने, यानी नैगरा फॉल ते कब्जा उन्हों का साडा नहीं हैगा, असी तो छोटे छोटे अपने म्यूजियम म्यूजियम जो बना सकते हैं, बड़ियां सारिया जिहड़ियां चीज़ां ने वो लॉबी कोल कंट्रोल्ड ने बाय द US TTC दे उपर जिन्ने भी साइन लगे होंगे ने एडवरटाइजमेंट ते गो ते तुसी ट्रांजिट सिस्टम जिहड़े हैगे ने टोरंटो दे TTC दे यानी कि सबवे लाइनस ने अंदर सबवे ट्रेनस दे और बाहर, अमेरिका दी कंपनी आ जिन्हें पिछले 10 साल पहला 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिशियंस नाल मिलके किया। मस्क ने एक पेनल्टी आ जिहड़ी कि बड़े वड्डे लैवल दी आ डगफोर्ड तो साइन कराई कि जे मेरे तो कम ना कराया तो इन्नी पेनल्टी दे के थोड़ी सरकार खेड़ा चढ़ाऊगी, तो इत्थे गरीब

0: मेडिकल इंश्योरेंस नंबर है जी 4168176500। दिस इज हरप्रीत सैनी, चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स, पेस्ट्रीज, मठियाइयां, समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचने वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो।
2: घर तो आपा एडा वड्डा इन्ना सोना ले लिया, हुन अप्लायंसेस भी हाई एंड ही लेने हैं।
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस है ना, फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, वॉशर एंड ड्रायर, एलईडी टीवी, सब इत्थों ही लवांगे। इन्ना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनिया। कोई भी अप्लायंसेस खरीदो, पेमेंट भी 6 महीने च करनी है, वो भी बिना किसी ब्याज दे। होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करेंगे। कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828-905-450-2828।
4: आज खुश तो बात हो गई
5: ओ ता होना ही है जो ढिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तैन लगता बनदा ही है।
4: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
5: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी आला IPTV बॉक्स है। ते नाले ढिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए?
6: चल क्या रहा है यहां पर?
5: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
5: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा?
8: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station.

0: 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
2: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: सफर विच मुश्किल तक कते भी आ सकती है। एक्सीडेंट या सट लगन कारण जिंदगी दी गड्डी खलो गई है, काम ते भी नहीं जा सकते, सारे पासियों समस्यावां ने घेर लिया है, तां दिल ना छड्डो, असी हां तुहाडे दुख वंडाउण लई। साडे एक्सपीरियंस्ड लॉयर रूपा बराड़ तुहानू टाइम ते वध तों वध बेनिफिट्स दवा सकदे हन, इत्थों तक कि फीस भी क्लेम मिलन तों बाद। ज्यादा जानकारी लई कॉल करो रूपा बराड़, कॉल 416-991-5939-416-999-5949-5949।
1: दुख ए नहीं कि सज्जन कुत्ते निकले, ना ना ना, दुख ए नहीं कि सज्जन कुत्ते निकले, कुत्ते हुंदे तां वफा ना करदे,
2: वाह शेरा
1: जनाब, तां कुत्तियां तों वी उत्ते निकले।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, see Pal de Vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options, Suno Chai Dene, Janto see visa services, the Pal de Vecho, Puri family vacation upper Jan the Sochune, Jitano all inclusive vacation packages, Pimildene, Ponchna Maji, Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper, call Karsak Deo 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: Aaj खुश तो बात होगी
6: तुम। ओ ता होना ही है, जब तक नो वीडियो दा, नो फ्रीजिंग, नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे, तई लगता बनदा ही है।
5: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
6: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी आला IPTV बॉक्स है। ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है, ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए?
7: चल क्या रहे यहां पर?
6: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
6: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा?
9: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
10: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
9: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
11: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157, 416-570-0157।

0: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
1: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स, कॉल 905-358-0864
0: 905-358-0864 ढाबा ऑन द फॉल्स।
2: मित्रां दे जंक्शन ते
1: हो केड़े जंक्शन ते
3: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते
2: रात लगियां वह फुलाना रे
3: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM टू 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-449-4240 टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
4: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे पीयूच जंट पढ़ दा विमला विलेज ला विलेज विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।

0: ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानूं सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 6-457-3381 ते।
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
5: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स। बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सवेरे 10 बजे शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट। मजा लवो संडे नु पराठा प्लेट, मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूसडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा। ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते। डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल। कॉल एट 9057948111। सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली

0: इंग्लिश ही नहीं आती, तुहानू जमा स्क्रैच तो इंग्लिश बोलनी पढ़नी लिखनी ते ईवन कंप्यूटर तक भी चलाना भी जमा स्क्रैच तो ही सिखा देंगे। बस नंबर कमाओ, फ्री कंसल्टेशन है इन्हें एकेडमिक काउंसलर्स नाल 905-872-0088 905-872-0088 क्वींसवुड कॉलेज ब्रैम्पटन। सत श्री अकाल जी। कैंपस दा एड्रेस भी दस दो, प्लीज दसो कि केड़े केड़े कोर्स जल्द शुरू होने लगे ने।
1: हां जी सम्राट, कॉलेज दा फोन नंबर है 905-872-0088 905-872-0088 ते कॉलेज दा एड्रेस है 2023 विलियम्स पार्क वे ईस्ट यूनिट 3 ब्रैम्पटन ते मेजर इंटरसेक्शन विलियम्स पार्क वे ते एयरपोर्ट रोड। क्वींसवुड कॉलेज दा मेन फोकस है कि स्टूडेंट नु एज अ प्रैक्टिकल कोर्सेज दिते जान जो कैनेडा विच अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी नाल डायरेक्टली कनेक्टेड आ। इस करके असीं हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, फार्मेसी, अकाउंटिंग ते लैंग्वेज ट्रेनिंग वर्गे प्रोग्राम्स ऑफर करदे आ। सब तो पहला असीं गल करदे आ हेल्थ केयर प्रोग्राम दी, जिन्हां विच मुख्य प्रोग्राम पर्सनल सपोर्ट वर्कर, फार्मेसी असिस्टेंट, मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट शामिल ने। गल करदे आ जी फार्मेसी असिस्टेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ए कोर्स उन्हां लई फायदेमंद है जो अपनी जॉब करन दे नाल नाल अपने आप नूं अपस्किल करके करियर चेंज करना चाहुंदे आ, क्योंकि ए एक शॉर्ट 10 हफ्तियां दा फुली ऑनलाइन प्रोग्राम आ। ए कोर्स करके तुसीं फार्मेसी विच जिवें कि शॉपर्स ड्रग मार्ट, फ्रेशको, वॉलमार्ट, लोकल फार्मेसी विच जॉब कर सकदे हो। इन्हां दा नवा इवनिंग बैच 20 अगस्त तों शुरू होण लगा। हेल्थ केयर दा दूजा प्रोग्राम शुरू होण जा रहे ने पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम। ए 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। जेडे लोग कैनेडा विच किसी भी लीगल स्टेटस यानी वर्क परमिट, रेफ्यूजी या विजिटर ते ने, ओ इस कोर्स नू करन लई एलिजिबल हैंगे। उन्हां नू किसी भी स्टडी परमिट की लोड़ नहीं है कोर्स करन लई। क्वींसवुड कॉलेज सारे स्टूडेंट को कोई भी इंटरनेशनल फी चार्ज नहीं करता एंड स्टूडेंट अपनी फुल फी इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट विच पे कर सकते हैं। इन्हां दा नवा बैच मंडे 24 अगस्त तो शुरू होने लगा। हेल्थ केयर विच मेडिकल ऑफिस दा डिप्लोमा भी बड़ा हाई डिमांड विच आ। जो लोग डॉक्टर्स ऑफिस, हॉस्पिटल या फिर किसी भी मेडिकल ऑफिस विच एक वाइट कॉलर जॉब लेना चाहते हैं, यह कोर्स उन्हां वास्ते लई है। मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट डिप्लोमा प्रोग्राम दे विच 240 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो कि कॉलेज अरेंज करता है डॉक्टर ऑफिस विच। एजुकेशन स्ट्रीम की गल करिए तो शॉर्ट कोर्स फुली ऑनलाइन अर्ली चाइल्ड केयर एड का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। यह प्रोग्राम स्पेशली उन्हां लई लाभदायक है जिहड़े लोग बच्चों के नाल काम करना चाहते हैं, डे केयर विच या अपने घरों डे केयर रन करना चाहते हो। अगर तुसी ऑलरेडी PSW हो या PSW दा कोर्स किया होया तो अर्ली चाइल्ड केयर एड दा कोर्स करके स्पेशल नीड्स किट दे नाल भी काम कर सकते हो। सभी डिप्लोमा प्रोग्राम दे लई प्रीक्विस्ट है मिनिमम ग्रेड 12th तुसी किसी भी कंट्री तो कीती हो या फिर तुहाडी उम्र 18 साल तो उपर हो एज अ मैच्योर स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्स करन लई। नाल ही गल करदे आ शॉर्ट कोर्सेज बारे जिन्हां विच क्वींसवुड कॉलेज शुरू करन जा रहे ने फ्रेंच लैंग्वेज कोर्सेज लेवल A1, A2, B1, B2। इस दे नाल ही इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज भी शुरू हो रही ने, लैंग्वेज एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेज भी शुरू हो रही ने फॉर IELTS, CELPIP, PTE, TEF, TCB प्रिपरेशन। वीकेंड ते वीकडेज ते कंप्यूटर क्लासेज शुरू होने जा रहे ने उन्हां वास्ते जिन्हां नूं बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं आता या फिर अपने कंप्यूटर स्किल अपग्रेड करना चाहते हो। इंटरमीडिएट ते एडवांस लेवल ते कंप्यूटर क्लासेज वीकेंड, वीकडेज, इन परसन ते ऑनलाइन क्लासेज भी अवेलेबल आ। क्वींसवुड कॉलेज होर भी कई सारे डिप्लोमा शुरू कर रहा है जिवें कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग डिप्लोमा, डेटा एनालिस्ट डिप्लोमा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फूड सर्विस वर्कर जिन्हां नूं डाइटरी एड डिप्लोमा भी कहिंदे आ। इन्हां कोर्सां दी होर जानकारी लई तुसीं साडी वैबसाइट queenswoodcollege.com तों देख सकदे हो या फोन करके सानूं मिल सकदे हो अपॉइंटमेंट नाल। कॉलेज 7 दिन ओपन होंदा है, एक बारी आके साडे एडमिशन काउंसलर नूं जरूर मिलो। कॉलेज दा फोन नंबर है 905-872-0088 905-872-0088। वॉक इन लई कॉलेज दा एड्रेस है 2023 3 ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ 3 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮੇਜਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ